0: उर्दू ते पंजाबी विच भी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने, आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: हालांकि भरोसे के मामले में शी जिनपिंग को ट्रंप से बेहतर रेटिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि अमेरिका चीन की तुलना में निजी यानी कि व्यक्तिगत आजादी का ज्यादा सम्मान करता है। प्यू रिसर्च सेंटर ने फरवरी से मई के बीच 36 देशों के 42,000 से ज्यादा लोगों से बात करके ये सर्वे किया और सर्वे में लोगों से क्या क्या पूछा गया ये भी बता देते हैं। सर्वे में आम लोगों के सामने सवाल रखा गया कि वो अमेरिका और चीन के बारे में क्या राय रखते हैं। उन्हें चार ऑप्शन दिए गए, बहुत अच्छी, कुछ हद तक अच्छी, कुछ हद तक खराब या फिर बहुत खराब। लोगों से यह भी सवाल किया गया कि दुनिया के मामलों में सही फैसले लेने के लिए उन्हें शी जिनपिंग पर ज्यादा भरोसा है या ट्रंप पर। वैसे तो दोनों नेताओं पर लोगों का भरोसा कम ही मिला, लेकिन शी जिनपिंग इस मामले में ट्रंप से थोड़ा सा आगे पाए गए। और यहां पर पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर फैसल अहमद को। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहला कमेंट यही लेना चाहूंगा कि ये जो सर्वे है इसके रिजल्ट पर आपका टेक क्या है?
1: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है क्योंकि और बहुत टाइमली भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2020 से एक अमेरिका और वेस्ट की तरफ से कॉन्सर्टेड एफर्ट चल रहा था कि भाई चाइना के इमेज को मेलाइन करना, जिसमें खास करके कोविड वगैरह टाइम के बाद से, तो ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज बन गया था चाइना को। और पिछले 6 साल से आप देखेंगे कि चाइना एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसकी ग्लोबल इमेज इंप्रूव हो। तो मेरे ख्याल से उनका अपना एक एफर्ट बहुत रहा है अपनी ग्लोबल इमेज को इंप्रूव करने में चाइना का। और यूएस की जहां तक बात है कि भाई यूएस या चाइना वर्सेस चाइना इमेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज बहुत अपेरेंट है एक्चुअली, और वही चीज रिफ्लेक्ट भी एक तरीके से प्यू रिसर्च में आप कहेंगे कि हो रही है। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो यूनाइटेड स्टेट्स का आज की डेट में जो उसके इमेज को गिराता आया वो है कि भाई यूएस जो है वो हर जगह एक अनड्यू इंटरफेरेंस करता रहा है, और ऐसा अनड्यू इंटरफेरेंस चाइना के तरफ से देखने को आमतौर पर नहीं मिल रहा है, अनलेस कि उसके कुछ जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह में ऑफकोर्स इंडिया के साथ है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे एक अनड्यू इंटरफेरेंस यूनाइटेड स्टेट्स का है वो नहीं है चाइना की तरफ से। दूसरी चीज ये है कि जो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द इयर्स एक तरीके से आप समझिए कि जो जियो स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह लोग उसको देखते थे कि भाई सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है यूनाइटेड स्टेट्स, वो पिछले मतलब 10 साल से ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अब कंट्रीज अपना रिलायबल पार्टनर मान ही नहीं रही है। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, साउथ एशिया, इवन साउथ एशिया ले लीजिए आप, साउथ ईस्ट एशिया है, वो उसको एक रिलायबल पार्टनर अब नहीं मानते हैं। और उस स्पेस को धीरे धीरे चाइना फिट इन कर रहा है, क्योंकि वो चाइना जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है विन विन सिचुएशंस की, और अमेरिका जो बात कर रहा है वो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो यहीं पे दोनों में डिफरेंस आता है कि एक कंट्री आपको विन विन सिचुएशन की बात कर रही है, ट्रेड ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, फाइनेंसिंग ले लीजिए, जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है वो ले लीजिए, एड ले लीजिए, दुनिया भर की चीजों में चाइना जो विन विन क्रिएट करने की बात कर रही है, जिस कर रहा है जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है।
0: जी जी,
1: अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, इसलिए अमेरिका हर सबसे बात इसलिए कर रहा है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट को हमें स्ट्रेंथन करना है,
0: अमेरिकन स्ट्रेंथ, अमेरिकन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट करना है। मैं अब दो कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, शी जिनपिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ जो दूसरे कैरेक्टर हैं ट्रंप हैं। अगर सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी को लेकर जहां पर ये हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इसमें शी जिनपिंग बाजी मार रहे हैं?
1: क्योंकि एक जो अमेरिका से जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, खास करके आप ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे, ये मैं सिर्फ ट्रंप की बात नहीं करूंगा बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या चाइनीज प्रेसिडेंट या जो कंट्री इस तरह के वर्ल्ड पावर या ग्लोबल पावर अपने आप को मान रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो एक हाफ बेक्ड पॉलिसी लेके ना आए। सबसे पहली चीज, वो बहुत ही रैंडम या स्पॉन्टेनियस एक्शंस या एक्टिविटीज ना करें, वो माहौल को प्रेडिक्टेबल रखे ना कि अनप्रेडिक्टेबल बना दे। तो यही डिफरेंस आ रहा है बहुत क्लियरली जो है शी जिनपिंग में और डोनाल्ड ट्रंप में, कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला रहे हैं पूरे दुनिया में, जिससे उनकी खुद की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डिक्लाइन।

0: प्लस लोगों का एक इंटरेस्ट, एक जो मतलब भरोसा था एक कि भाई अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म आप बोलिए या अमेरिकन एक तरीके से सुप्रीमेसी उनको ग्लोबल पावर मानने का, वो भी काफी हद तक कम हो रहा है।
1: जी
0: दूसरा ये कि बहुत ही रैंडम चीजें जब आती हैं कि टैरिफ लगा दिया, फिर टैरिफ हटा दिया, फिर आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए जैसे डोनाल्ड ट्रंप लेके आए, तो ये तरीका एक ग्लोबल जो वर्ल्ड लीडर कंट्री अपने आप को मान रही है उसका बिल्कुल ये तरीका नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही रैंडम और स्पॉन्टेनियस है,
1: जी आप ये कह रहे
0: अनलाइक
1: हैं,
0: शी जिनपिंग को आप देखेंगे।
1: आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप तरीका फॉलो कर रहे हैं बहुत ही रैंडम है। अगर मैं प्यू रिसर्च के हवाले से बात करूं तो 36 में से 25 देशों में ज्यादातर लोगों ने चीन के बारे में अमेरिका की तुलना में बेहतर राय जताई है। और अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो स्पेन है, इंडोनेशिया है, इटली है, ग्रीस और कनाडा उन देशों में शामिल हैं जहां चीन के प्रति लोगों के नजरिए में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। और केवल 6 देशों में अमेरिका को चीन से ज्यादा पसंद किया गया और इनमें से जो ज्यादातर जो देश हैं वो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं जैसे कि पोलैंड, साउथ कोरिया, भारत और इसराइल। ये टेक
0: देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब इस तरह के रिसर्च होते हैं तो ओवरऑल इसमें एक सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि ओवरऑल पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ रही है, क्योंकि जो कंपैरिजन की बात होती है, जब आप यूएस चाइना को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आखिर आप कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस चाइना आज की डेट में एक ग्लोबल पावर है, ग्रेट पावर है जिसको आप बोला जाए इन शॉर्ट, तो इसलिए हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज, अब मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं या साउथ एशिया, दूसरे जगह की कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहा है एक्सपोर्ट में, इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको बेनिफिट्स चाइना से डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसलिए और वो वही बेनिफिट वो हमेशा से एक्सपेक्ट यूनाइटेड स्टेट से करते रहे जो कि उनको नहीं मिल रहा है। अब कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो है मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया इज अ नेचुरल एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, एक इजराइल एक नेचुरल एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका चाइना से रिलेशंस हो सकता है लेकिन एलाई के तौर पे वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ रुझान रहेगा।
1: बिल्कुल
0: इंडिया की जहां तक हम बात करें तो इंडिया में क्या है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं लेकिन आमतौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट का इश्यूज को लेके हम लोग का एक रुझान अमेरिका की तरफ हमेशा रहता है क्योंकि हम अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं इस इशू में, तो इसलिए ये बात उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन एक लार्जर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि दो पावर के कंपैरिजन में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने पिछले 6 साल में जो उसकी इमेज डिक्लाइन हुई थी उसको उसमें एफर्ट किया उन्होंने, वो डेलीगेशंस लेके गए, उन्होंने जो है इन्वाइट किया बाहर से लोगों को, दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपने यहाँ, उन्होंने स्कॉलरशिप दी, एजुकेशन बढ़ाया, मतलब उन्होंने एक इमेज मेक ओवर के हिसाब से काम किया। आपको याद होगा कि 2020 में
1: जी
0: ट्रंप ने कहा था कि भाई इट्स ए चाइना वायरस, और इसको लेके पूरे दुनिया में ये बात बहुत फैली भी, और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने इस तरह के एफर्ट्स भी किए कि भाई हाउ टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन, कि चाइना से कट ऑफ कर लें, कंपनीज बाहर निकल जाएं, उनकी सप्लाई चेन पे जो है मतलब रेजिलियंस कैसे आएगा, चाइना से थोड़ा डिटैच हो जाएं, डीकॉपलिंग स्ट्रेटजी आई अमेरिका की वेस्ट की, तो
1: जी
0: इन सब चीजों को तो चाइना ने झेला ही है, चाइना प्लस वन अभी चल रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: इन सब चीजों को झेलते हुए उन्होंने अपना इमेज मेकओवर पे काफी पैसे खर्च किया और काफी ध्यान भी
1: तो
0: दिया।
1: इमेज मेकओवर पर बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया है और खुद को भी सामने रखने की कोशिश की। अगर अगर यूरोपियन कंट्रीज के नेताओं की बात की जाए तो वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के नेता लगातार चीन का दौरा करते हुए दिखे, लेकिन इस सर्वेक्षण में चीन के प्रति एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा नेगेटिव राय अगर देखी जाए तो दोनों ही एशिया पैसिफिक क्षेत्र से सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और जापान में सबसे कम, और पाकिस्तान में तो ये 85% है।
0: आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 85% उनके अगेंस्ट है
1: नहीं,
0: चाइना के,
1: पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शी जिनपिंग के साथ हैं।
0: हाँ तो देखिए, जो वही मैं कह रहा हूं कि जो आप देखेंगे कि पाकिस्तान वगैरह का सिचुएशन ये है कि उन्होंने दोनों से एक कोऑपरेशन बनाया हुआ है लेकिन चाइना ने ऑलरेडी उसमें वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर जो आती है उनके लिए, चाइना के लिए एक बाय डिफॉल्ट रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाती है। जापान की जहां तक बात करें तो जापान तो हमेशा से, आप देखिए जापान क्वाड में भी है, जापान को चाइना से

0: कई तरह के प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जापानीज जो है वो नेचुरली अमेरिका की तरफ उनका रुझान ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें पूरे में आप ये देखें, जो यूरोप की आपने बात की उस पर भी मैं एक
1: जी
0: दो लाइन बोलूंगा कि यूरोप बेसिकली अपने आप में एक इकोनॉमिक डिक्लाइन में है, ठीक है। उसको यूनाइटेड स्टेट्स, अब आप कोई नया मार्शल प्लान तो नहीं निकाल सकते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो अमेरिका मार्शल प्लान लेके आया, तो वो मार्शल प्लान तो अब अमेरिका नहीं आएगा। अमेरिका तो अब पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो क्लाइमेट चेंज पे खर्च करना चाहता है, ना WTO पे खर्च करना चाहता है, तो ना किसी को एड देने के लिए तैयार है। तो अब जो चीज है वो ये है कि यूरोप चूंकि खुद एक इकोनॉमिकली एक रिलेटिव डिक्लाइन में है, उसके लिए जो बेहतर ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नहीं है। उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हमेशा चाइना है, क्योंकि चाइना वाइब्रेंट इकोनॉमी है, चाइनीज जो है वो बिल्कुल रेडी है उनके साथ कोऑपरेशन के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स जब आएगा कोऑपरेट करने के लिए तो वो टर्म्स डिक्टेट करेगा आपको, चाइना टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजों में चाइना ऑलरेडी एग्री है यूरोप के कंट्रीज के साथ।
1: जी, यहां पर मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। एक क्विक टेक लेते हैं और दोनों नेताओं की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो मिडिल इनकम वाले जो कुछ देश हैं, जब लोगों से चीन और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया तो इनमें ज्यादातर का मानना था जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के मामलों में काफी हद तक दखल देता है, जबकि चीन के बारे में ऐसा कम लोगों ने कहा। साफ साफ डिफरेंस है कि ज्यादा दखल पूरी दुनिया में अमेरिका देता है।
0: बिल्कुल, इसमें देखिए कोई, ये तो हिस्टोरिकली साबित है कि चाइना ने इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे तो दखल नहीं दिया, लेकिन चाइना का अमेरिका का तो एक एग्जांपल है भाई। दुनिया भर में इराक है, अफगानिस्तान है, पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे जो है वेस्ट एशिया में है, उनके मिलिट्री बेसेस है, नवल बेसेस है दुनिया भर में जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। वेनेजुएला वगैरह का भी एग्जाम्पल है कि डायरेक्टली आप जो है एक लीडर को उठा के अपने कंट्री में ले आए। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये चीजें चाइना में नहीं है। वही मैं बताना चाह रहा था कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि प्रेडिक्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का और रिलायबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इतना ज्यादा इंटरफेयर करने में बिलीव कर रहा है अभी भी कि जिस और उस गैप को चाइना ब्रिज कर रहा है एक्चुअली। जहां मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरफेयर कर रहा है उस गैप में जो है चाइना जाके उनको कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे आपको, जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देंगे हम आपके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हम, आपकी ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि और यूनाइटेड स्टेट्स है, सब लोग परेशान है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, टैरिफ वॉर हम देख चुके हैं। तो सारे कंट्रीज जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, और हो क्या रहा है कि यूएस इंटरेस्ट की बात हो रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आप यूएस इंटरेस्ट को हम पूरा करेंगे। चाइना में किसी भी डिस्कोर्स में आप देखेंगे वो दे आर नेवर टॉकिंग अबाउट कि हम चाइनीज इंटरेस्ट को पूरा करना चाह रहे हैं, दे
1: बिल्कुल।
0: आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विन विन सिचुएशन, विन विन
1: तो आप ये कह रहे हैं कि चीन हमेशा जो है वो विन विन सिचुएशन की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैसल अहमद साहब इस डिस्कशन के लिए कि आखिरकार जो दो पर्सनैलिटीज हैं अमेरिका और शी जिनपिंग, इनमें से कौन इस सर्वे में आगे आया है। अब यहां पर हम बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनकी नजरें हैं अब फाइनल पर कि किसके सिर पर विजेता का ताज आने वाला है, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। अब अर्जेंटीना का सामना 19 जुलाई को न्यू जर्सी में स्पेन से होने वाला है। और यहां पर मेरे साथ शामिल हो चुके हैं बीबीसी संवाददाता भरत शर्मा। तो भरत, सबसे पहले तो जरा सेमीफाइनल की शानदार कहानी सुना दीजिए।
2: बहुत कम मैच ऐसे होते हैं जो एकदम धागे पे लटके होते हैं, डोर पे लटके होते हैं। ये मैच ऐसा ही था। अर्जेंटीना के फैंस जो हैं वो 85 मिनट तक इंतजार कर रहे थे और पीछे चल रही थी अर्जेंटीना की टीम, और लग रहा था कि लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का ख्वाब जो है वो टूट जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबला था, यहां से हार का मतलब था बाहर हो जाना। और इंग्लैंड के फैंस दूसरी तरफ बहुत खुश थे क्योंकि 55वें मिनट में ही गॉर्डन ने एक गोल दागा और टीम को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक इंग्लैंड की टीम शायद डिफेंसिव हो गई और अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी की। पहला गोल आया 85वें मिनट में और दूसरा आया 92nd मिनट में, जिसको इंजरी टाइम कहा जाता है, जो 90 मिनट के बाद का जो टाइम होता है। उसमें भी 2 मिनट गुजर गए थे तब दूसरा गोल आया और 2-1 से अर्जेंटीना आगे हो गई और फिर मैच इसी स्कोर लाइन पर खत्म हुआ। इंग्लैंड का ख्वाब टूट गया।
1: भरत, मेसी का जो प्रदर्शन है जरा उस पर भी एक टिप्पणी कर दिए।

0: सर मैसी के मामले में मैसी ही मैसी है, मैसी मैजिक ही चल रहा है। एम्बापे की 3 बार हो चुकी है, पुर्तगाल पुर्तगाल बाहर हो चुकी है जहां रोनाल्डो दिखा करते थे, लेकिन मैसी का जलवा बरकरार है। 39 साल की उम्र का यह खिलाड़ी न केवल गोल दाग रहा है बल्कि असिस्ट भी कर रहा है। अर्जेंटीना ने जो 2 गोल दागे, दोनों ही गोल में मैसी की अहम भूमिका रही। दोनों गोल बना के दिए मैसी ने, दोनों के असिस्ट में जो है मैसी का रोल रहा। पहला गोल मारा फर्नांडिस ने, दूसरा मारा मार्टिनेज ने, लेकिन दोनों बार जो गोल बनाने कहते हैं फुटबॉल की भाषा में कि गोल बनाकर किसने दिया, असिस्ट किसने किया, वो दोनों बार नाम मैसी का था।
1: और मैसी भरत, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर किस टीम पर है, आपका दांव किस पर है, अर्जेंटीना पर या स्पेन पर फाइनल में?
0: मोहनलाल जी, दोनों ही टीम बहुत ताकतवर हैं। एक रनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप है 2022 का वो अर्जेंटीना ने जीता है, और यूरोपियन चैंपियन इस समय स्पेन है, और दोनों टीमें आमने सामने है, तो 2 वर्ल्ड चैंपियन टीम भिड़ेंगी और कोई एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। संडे का इंतजार करना होगा, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना जाने जाती है अपनी कलात्मक फुटबॉल के लिए, और स्पेन उनका डिफेंस इस वर्ल्ड कप में सबसे शानदार रहा है, तो उस दीवार को क्या तोड़ पाएंगे मेसी या नहीं, उस पर सारा दारोमदार है, और टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड चैंपियंस टीम है। इससे पहले स्पेन एक बार वर्ल्ड कप जीत चुका है और अर्जेंटीना अपना 4th वर्ल्ड कप तलाश रहा है,
1: तो हमारी भी निगाहें होंगी कि आखिरकार अर्जेंटीना और स्पेन में से कौन जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत शर्मा। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको बताना जरूरी है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है QR कोड, इसे स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए बीबीसी न्यूज हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर।
2: सो बिल्कुल जी, बीबीसी जेड़ी बड़ी रिलायबल ते बड़े सालां तो सुनते भी आ रहे हैं, ते गल्लां बात कीतियां जांदियां सीगियां। सो अज भी प्रोग्राम आई होप तुसीं पसंद कीता होएगा, क्योंकि दोनों ही प्रोग्राम जेड़े ने बड़े इंपोर्टेंट ने, क्योंकि मैसी जेड़ा उन्हें 8 गोल भी किए ते 4 असिस्ट भी किए है, जेड़े कि एक गोल्डन बूट का अवार्ड भी उन्हें मिलेगा बेसिकली जे जित जाते हैं, तो होपफुली चांस तो है ही है, पूरा जितने का चांस किन्ना के ये सारी गलबात सुनी ली किस तरह दी, बट जिस तरीके उन्हें मूव बना बना के जिन्ना क मैं देखा मैच में वाकई रोनाल्डो जिहड़ा बेचारा रह गया, जिहड़ा कि दुनिया का बेहतरीन पैसे कमाने वाला तो अपनी एक मिसाल छड्डन वाला बंदा सीगा, वो नहीं अगे वध पाया, बट मैसी ने जिस तरीके अपनी गेम खेलता तो जिहड़ा मैच दे विच लोकी देखदे ने, इस यही कारण है भी लोकी जिहड़ा उह मैच देखना पसंद करदे मैसी दा, जिहदे करके उन्हें सारा कुछ करके दिखाया। तो अज दे प्रोग्राम च कुछ खबरां लोकल ते इंटरनेशनल जिहड़ियां तुसीं सुन रहे हो, तो उहदे नाल नाल वैदर अपडेट के उत्ते भी गलबात की जा रही है। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लैके फिर इस तों बाद वापस मिल के बाकी दी जिहड़ियां खबरां ते गल्लां बातां ने उह इसे तरीके जारी रखांगे। सबरंग रेडियो 94.7 FM ते जी।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
5: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
4: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
5: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
4: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
5: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
4: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
5: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
6: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा।

0: वासियो की तुसी लंबी लाइन अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 5876174696 5876174696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ़ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
1: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर

0: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
1: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
0: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: द टाइम इज 9 PM।
3: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Runtepujo, 2935 19th Street, Northeast Calgary, Calgary Carpet Empire. Phone number 403-510-1515. 2935 19th Street, Northeast Calgary.
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमंड ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छठी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835 बाय नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है

0: टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर देंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
1: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा कर लिया सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे सामान नु हाथ पावे
1: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
3: अपने घर जां ऑफिस दा सामान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी
1: इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा मानस होरां दा दावा है कि अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस ते अगर तुसी बेस्ट रेट लेने ने ते 587-832-1208 ते संपर्क कर लो 5878321208 YYC होम केयर तो वीरपाल कौर होरां दी कंपनी घर विच ही बजुर्गों की सांभ संभाल लई सेवावां दिंदी है ते बिल सरकार नूं भेजदी है फोन 8257609083 है जी ओसे समाइल मैडिकल क्लीनिक जिथे के किसी अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं है हफ्ते के 6 दिन खुलते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर ने इन्हां कोल सनरेज एरिया नवे पेशेंट भी ले जा रहे हैं ओएसए समाइल मैडिकल जो कि 587-617-4496 ते इन्हां नाल गलबात कर लो ते पूरी डिटेल जानकारी लै लो पर हफ्ते के 6 दिन खुलते हैं कोई अपॉइंटमेंट की लड़ नहीं है तुम जा सकते हो वैसे ही मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा की सब तो वड्डी डीलरशिप है नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के कंट्री हिल्स से है तो संपर्क तुम गौरव शर्मा होर करना फोन 403-903-7657 403-903-6757 पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू तो लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस के सुपरविजर इंश्योरेंस करते हैं फोन नंबर है 403-404-3500 403-404-3500 मदर इंडिया रेस्टोरेंट जिथे कि सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक ब्रेकफास्ट बफे जिहड़ा लगता है जिस विच 40 तो वध आइटमां हुंदियां ने तुसीं इंजॉय कर सकते हो 40 तो वध आइटमां ते 40 गैसट बैठ के इत्थे खाना भी खा सकते हैं 24 घंटे खुला रहिंदा है जी हाँ मदर इंडिया नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन 24 घंटे 7 दिन खुलता है सिटी स्केप लैंडिंग दे विच फोन 403-936-7777 403-936-7777 पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच है इत्थे $7 दे विच पासपोर्ट फोटो तुसी सिर्फ बना सकते हो इस तों अलावा फैमिली फोटो बच्चे ने फोटो फैमिली पोर्ट्रेट्स ते फोटो प्रिंट करके देंगे फोटो ठीक भी कर देंगे आप जी अगर पुरानी फोटो है प्रिंट करके फ्रेम करके भी दे सकते हैं सो बहुत वधिया क्वालिटी का कम पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार ते पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 दे विच दो पासपोर्ट फोटो जां प्रिंटेड लै लो जां डिजिटल कॉपी लै लो दोवां विचों एक अगर तुसीं लैणी ते $7 आप जी तो लै जाणगे पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी ते आओ हुण प्रोग्राम दे विच असीं अगली खबर वल ध्यान करते हैं जी जिहड़ी खबर ब्रेक ते जाण तो पहलां एक्सटॉर्शन नाल संबंधित एक व्यक्ति दी असीं कर रहे सी उसे तरह की जिहड़ी खबर है डिपोर्टेशन दे एक केस दी है जी ते इह कहण दी लोड़ ते जिहड़ी मेरा ख्याल है नहीं कि इह भी किसे पंजाबी व्यक्ति दे नाल संबंधित है सो आओ इस खबर ते हुण चानना पाउंदे आ इहदे विच कैनेडा दे विच जिहड़ी एक्सटॉर्शन ते गैंगस्टर नैटवर्क दे खिलाफ एक वड्डी खबर जिहड़ी आई है सामने उस विच लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे एक कथित मैंबर साहिब जोत सिंह दे डिपोर्टेशन ऑर्डर नूं लै के अदालत दे विच एक ड्रामा देखण नूं मिलिया किस्म दा एक दिलचस्प मोड़ उस वेले आया जदों कहिंदे ने कि मुलजिम साहिब जोत सिंह ते उहदे वकील ने इमीग्रेशन ट्रिब्यूनल दे सामने ये मंग रखी कि सुनवाई की खबर मीडिया विच प्रकाशित ना कीती जावे ते पब्लीकेशन बैन जड़ा है वो होना चाहिए